करना अंडर कटलर अंडर बंदर अंडर बंदर जूट करना अंडर सूट करना अंडर डोट करना इपर जोड़ अंडर सूट करना अंडर डोट